सर्वदा वर्तमानोऽसि स एव मयि भजत। सर्वभूत स्थितं यो वा भजत्ये कत्वमास्थितः। सर्वदा वर्तमानोऽसि

0: सजन बिन शांति नहीं। जप जान बिन संयोग नहीं। प्रभु दर्श बिन प्रज्ञान नहीं। दया धर्म बिना क्या कर्म नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं।
1: Thank you.